0: शुक्ला गंडकी एफएम 97.6
1: मंगलम पुनरी काक्ष मंगलाय तनुहरी
2: पंडित बहादुर।